गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर, उठा उठा सकाळ झाली आणि वीकेंड ची मॉर्निंग गुड करायची वेळ आलेली आहे. तुम्ही ट्यून केलं MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान. और अब आप सवाल पूछोगे कि यार अदनान सैटरडे के दिन सुबह सुबह आकर उठने के लिए क्यों कह रहा है. देखो यार, जो उठे ना तो उनके लिए कह रहा हूँ, जो नहीं उठे हाँ उनका तो हक बनता है आज नींद मुकम्मल करना, पूरी करना, क्योंकि छुट्टी के दिन तो मैं भी यही काम करता हूँ, तो मैं आपकी नींद क्यों खराब करूंगा. लेकिन जो नींद से जाग गए है और जिनकी मॉर्निंग ना चाहे संडे हो मंडे हो एकदम जल्दी उठने से होती है, यार आप ना तो बड़े खुशकिस्मत होते. म्हणतात ना कि जे लवकर उठतं त्याचं आरोग्य निरोगी राहतं. तर हेच आजचा सुविचार आहे की जल्दी उठिएगा और अपने हेल्थ को वेल रखिएगा. बाकी तो आज ही वीकेंड के बाद शनिवार, और शनिवार के दिन बहुत सारे प्लान्स होते हैं आपके. एंड शनिवार का इंतजार हमें पूरे हफ्ते से होता है, बिकॉज सुकून का नाम अगर कोई होगा वो होता है शनिवार. मतलब संडे के दिन हमें उतना हैप्पीनेस वाला फील नहीं आता जितना शनिवार के दिन आता है. पता नहीं क्यों, इसका जवाब आपके पास भी होगा, क्योंकि एक माइंड में होता है ना भाई आज तो काम है फिर कल संडे है, और जिनको दो वीकेंड है उनके तो सोने पे सुहागा है ही. चलिए फिर आज के शो का आगाज करते हैं, कुछ मेरी और कुछ आपकी बात करते हैं जनाब. और आपका मूड फ्रेश करने के लिए ये अगला गाना भी हम प्ले करते हैं. सो बने रहिए इन द शो ऑल इज वेल. सुपर सुप्रभात छत्रपति संभाजी नगर. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जो अभी प्ले होगा. स्टे ट्यून्ड.

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक बार एक बुजुर्ग अपने पोते को एक पुराना कप दिखाते हैं। कप पर एक छोटी सी दरार थी। पोता बोला, दादाजी ये कप टूट गया है, इसे फेंक देते हैं ना। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा इस कप की दरार रोज याद दिलाती है कि एक दिन मेरे हाथ से ये गिर गया था। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मैंने इसे फेंकने के बजाय संभाल कर रख लिया। आज भी इस कप में चाय पी जा सकती है, बस इसमें एक निशान है। फिर दादाजी ने पोते से पूछा, अगर एक कप अपनी दरार के साथ काम आ सकता है तो इंसान अपनी गलतियों के साथ क्यों नहीं जी सकता। हम सबके अंदर भी ऐसी कुछ दरारें हैं। किसी को अपने लफ्जों से रिग्रेट है, किसी को किसी रिश्ते का, तो किसी को किसी फैसले का, और हम उन दरारों को देखकर खुद को ही बेकार समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है, गलतियां हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें इंसान बनाती है। इसलिए अगर आज भी आप किसी पुरानी बात के लिए खुद को सजा दे रहे हैं, तो एक बार उस पुराने कप को याद कीजिए। उसकी दरार उसकी पहचान नहीं बनी, उसकी कहानी बनी। और शायद आपकी गलती भी आपकी पहचान नहीं, आपकी सबसे बड़ी सीख बनने वाली है। तो दूसरों को माफ कर दिया, अब खुद को भी माफ कर लो, तो देखिए कितना सुकून मिलेगा।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about life mantra. Hello, you are listening MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है. और कभी किसी जॉब में रिजेक्शन मिला, किसी रिलेशनशिप में नो ऐसा सुनने को मिला, या फिर कोई सपना पूरा नहीं हुआ, उस वक्त लगता है कि सब खत्म हो गया यार. लेकिन अक्सर वही नो जिंदगी को एक नए और बेहतर रास्ते की तरफ ले जाता है. सोचिए, अगर हर चीज पहली बार में ही मिल जाती तो शायद हम कभी खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते. इसीलिए जब भी जिंदगी नो कहे, उसे अपनी कहानी का द एंड मत समझिएगा. हो सकता है वो सिर्फ डायरेक्शन बदल रही हो. याद रखिए, हर नो के पीछे एक बेटर यस छुपा होता है. बस हिम्मत मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी जो नहीं मिलता वही आपको उस जगह ले जाता है जहाँ आपको वाकई होना चाहिए.

शिक्षा आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546। MGM यूनिवर्सिटी, NCT, छत्रपति संभाजीनगर।

0: खबर।
1: फरमाइश पूरी करना तो अपना काम है। हेलो, मैं सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और अपने इस शो में बहुत सारी फरमाइश पूरी होती है, तो आज गाने की फरमाइश आई है संजय कुमावत जी की तरफ से। एक बेहतरीन सा गाना है जो कि 1980 की फिल्म है शान। इस फिल्म से प्यार करने वाले प्यार करते हैं, क्या बात है यार। और ये गाना गाया था आशा भोसले जी ने शान इस फिल्म के अंदर। और इस फिल्म में ना तो परवीन बाबी एंड अमिताभ बच्चन लीड रोल में आपको नजर आएंगे। 1980 का ये गाना आज भी उतना ही सुपर डुपर हिट है जो कि उस टाइम पर था। और ये पुराने गानों का एक मजा

अलग ही होता है। आप किसी भी वक्त में सुनो, कौन से भी साल में सुनो, फ्रेश होते ही है। तो चलिए फिर आप फरमाइश पर गाना एंजॉय करते हैं। बाय द वे, आपकी भी अगर कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बिंदास भेजिए अपनी फरमाइशें, बताइए और एंजॉय कीजिए आरजे अदनान के साथ। ऑल इज वेल।

एक सवाल पूछूं, माँ बाप को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से कहने लगे? सवाल है ना बहुत बड़ा। हेलो आरजे अदनान, आपके साथ है ऑन एमजीएम 90।

0: बॉन्डेड एफएम। और एक खबर आई थी अपने शहर की, एक घाटी अस्पताल में एक माँ एडमिट है और कहानी कुछ ऐसी है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो उनके अपने ही एक दूसरे के पास उन्हें भेजते रहे। पापा को मैंने संभाला था, माँ को तू संभाल, ऐसे दो बेटे कहने लगे। और सोचिए यार, जिस माँ ने कभी ये नहीं सोचा कि आज सिर्फ बड़े बेटे को खिलाऊंगी छोटे को नहीं, उसी माँ के लिए आज हिसाब किताब हो रहा है। बचपन में ना तो हम गिरते थे, माँ बिना सोचे समझे दौड़ कर आती थी और हमें उठाती थी, और आज वो खुद गिर जाए तो लोग सोचते हैं इस बार मेरी बारी नहीं है, दूसरा भाई उठाएगा। यू नो व्हाट, रिश्तों का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होता, बेपरवाही होता है। याद रखिए यार, पेरेंट्स आर नेवर बर्डन, दे आर द रीजन यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट टुडे, समझे। अगर आपके माँ बाप आज भी आपके साथ है तो उन्हें सिर्फ दवा नहीं, थोड़ा वक्त, थोड़ी इज्जत और बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा। सोचिए जरा, जिस माँ ने अपने बच्चों में फर्क नहीं किया आज उसके लिए हिसाब किताब हो रहा है। और दुख देने वाली बात ये थी कि जो माँ अभी घाटी अस्पताल में एडमिट है तो पिछले 2 साल से ओल्ड एज होम में रह रही थी, अपने बेटों का घर होने के बावजूद भी वो वहाँ पर रह रही थी और फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच में है। देखो यार, एक माँ ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजारी लेकिन आखिरी वक्त में उसको बच्चों का ही सहारा नहीं मिला। वैसे ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक सवाल है। अगर आप किसी दिन ओल्ड एज होम जाकर देखोगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारी कहानियां मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि यार, क्या माँ बाप सच में जिम्मेदारी होते हैं या फिर वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं हमारा फर्ज होते हैं। जवाब आपके पास है, वो जिम्मेदारी नहीं वो हमारा फर्ज है, हमें वो निभाना है क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया बचपन से लेकर आज तक। तो जब उन्हें हमारी जरूरत है उनका सहारा हमें बनना ही पड़ेगा। कभी कभी एक कप चाय और दो प्यार भरी बातें भी ना किसी दिन दवा से ज्यादा असर कर जाती है। तो वक्त मिले जैसे वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ बैठते रहिए, बातें कीजिए और याद रखिए आप वो बुजुर्ग हो रहे हैं, क्या पता कल हो ना हो। सो थोड़ा समझदार बनिए। अब ऐसे बच्चों को क्या ही कहे जो अपने माँ बाप को इस एज में ऐसा छोड़ देते हैं। खैर, ऊपर वाला इन्हें हिदायत दे। स्टे ट्यून ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942999.
3: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA. BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: अच्छा, तो हम चलते हैं।

आपने भी सोचा है, हमारे छत्रपति संभाजीनगर को सिर्फ अजंता एलोरा ही नहीं बल्कि एक और रॉयल पहचान दुनिया भर में मिलती है। हेलो आरजी अदनान को आप सुन रहे हो इन द शो ऑल इज वेल। और वो पहचान क्या है जानते हो? हिमरू। जी हाँ, वही हिमरू जिसे कभी बादशाह और नवाबों की शान माना जाता था। और सबसे गर्व की बात यह है कि आज भी हमारे शहर की सिक्स जनरेशन इस विरासत को अपने हाथों से जिंदा रखती है। एक हिमरू शॉल मशीन से नहीं 12 दिन की मेहनत और हुनर से तैयार होती है। हर धागा सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता, 600 साल पुरानी कहानी बनाता है। आज इस हिमरू की डिमांड सिर्फ भारत में नहीं विदेश तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक शॉल नहीं है, ये छत्रपति संभाजीनगर की पहचान है। जब दुनिया फास्ट फैशन के पीछे भाग रही है, हमारे शहर के कारीगर अपने हाथों से हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो अगली बार जब आप हिमरू देखें तो उसे सिर्फ एक फैब्रिक मत समझिए, उसमें छुपा है हमारे शहर का गौरव, हमारी संस्कृति और उन कारीगरों का पसीना जिन्होंने सदियों से इस विरासत को जिंदा रखा है। तो कभी आपने पहना है? कभी वो पहनने के बाद एक अलग प्राउड फील होता है, उसका कपड़ा भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो कभी ट्राई कीजिएगा एंड प्राउड टू बी फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर, जहाँ हर धागा एक कहानी कहता है और हर हिमरू शॉल हमारे शहर की शान बढ़ाती है। तो ऐसे भी कुछ हटके अपने शहर की पहचान है, याद रखिएगा और बाकी सुनते रहिएगा।

टीम इंडिया श्रीलंका सीरीज के लिए तैयार हो रही थी और उसके दरमियान एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हेलो आरजी अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। तो बात कुछ ऐसी है कि टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी श्रीलंका सीरीज के लिए, तो प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल के दाएं हाथ के अंगूठे पर बॉल लगी और अच्छी खासी चोट आई है। जैसी इंजरी हुई तो मेडिकल टीम ने तुरंत ट्रीटमेंट दिया। अच्छी बात ये रही कि कुछ ही देर बाद गिल दोबारा लौट आए प्रैक्टिस के लिए, यानी फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं लग रही है, लेकिन टीम मैनेज उनकी कंडीशन पर नजर बनाई हुई है। अब सबकी दुआ यही होगी कि टीम इंडिया के कैप्टन पूरी तरह फिट होकर 15 अगस्त से शुरू होने वाली श्रीलंका टेस्ट सीरीज में मैदान पर उतरे और ये सीरीज अपने नाम कर दे। बाकी तो अभी टीम इंडिया एकदम जोर शोर से तैयारी कर रही है इस सीरीज के लिए और इसका शेड्यूल कुछ ऐसा है कि फर्स्ट टेस्ट मैच होगी 15 से 19 अगस्त 2026 के बीच में एंड सेकेंड टेस्ट है 30 से 27 अगस्त 2026 के बीच में, जो कि कोलंबो में होने वाली है। और ये दोनों मैचेस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 के दरमियान जो होती है तो उसका हिस्सा होने वाले हैं। तो गुड लक टीम इंडिया, सीरीज जीत कर आना एंड गेट वेल सून शुभमन गिल। और भी अपनी बहुत सारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017088546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhajinagar.

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546। MGM यूनिवर्सिटी इन सिटी छत्रपति संभाजीनगर।

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है, आज किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेंगे यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आई हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University, NC3, छत्रपति संभाजीनगर.

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University, NCT, छत्रपति संभाजीनगर.

0: आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: जाबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुनता आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टेड दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शनिवार की इस खूबसूरत शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपका पूरा हफ्ता अच्छा रहा होगा और अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, थोड़ा मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गानों का मजा लेने का। वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है तो क्यों ना कुछ बेहतरीन धुनों के साथ इस शाम को और भी खूबसूरत बनाया जाए। अगले दो घंटों में हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार गाने, कुछ दिलचस्प बातें और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप घर पर हैं, दोस्तों के साथ हैं या फिर कहीं सफर पर हैं, तो हमारा साथ बनाए रखिए। संगीत का ये सफर आपकी शाम को और भी यादगार बना देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के पहले गाने की ओर। आवाज थोड़ी बढ़ाइए, मुस्कुराइए और एंजॉय कीजिए अपनी शनिवार की शानदार शाम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आप सुन रहे हैं आपकी स्पेशल इवनिंग वाला शो दिल से ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University, Institute, Kochi, Tirupati, Sambhajinagar.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज मेरा फास्ट है। वैसे मैं मानती हूँ कि हफ्ते में एक बार हमारे शरीर को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। जैसे हम पूरे हफ्ते काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी लगातार काम करता है। ऐसे में हफ्ते में एक दिन हल्का खाना या फास्ट रखने से शरीर को थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। फास्ट सिर्फ धर्म परंपरा ही नहीं बल्कि ये हमें सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है। इससे हम अपनी आदतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने खान पान पर ध्यान दे पाते हैं। लेकिन फास्ट का मतलब भूखे रहना नहीं है। जरूरी है कि हम अपने शरीर की जरूरतों को समझे और पर्याप्त पानी पीते रहे। अगर सेहत अनुमति दे तभी फास्ट रखे, वरना यार डॉक्टर की सलाह तो जरूर ले। वैसे आप में से कितने लोग हफ्ते में एक दिन फास्ट रखते हैं, और अगर रखते हैं तो किस दिन रखते हैं सोचिएगा जरूर। फिलहाल इसी पॉजिटिव सोच के साथ कि शरीर और मन दोनों को समय समय पर आराम मिलना चाहिए, बढ़ते हैं एक खूबसूरत गाने की ओर। ओनली ऑन एमजे 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी पूरे दिन सिर्फ फल खाना भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। हम रोज़ाना तरह तरह की चीज़ें खाते हैं लेकिन फलों में नेचुरल विटामिन मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए हफ्ते में कभी एक दिन ऐसा रखें जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं। इससे शरीर को हल्का महसूस होता है और मन भी फ्रेश रहता है। सेब, केला, पपीता, अमरूद, तरबूज या फिर जो भी मौसमी फल आपको पसंद हो उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि फल स्वादिष्ट भी होते हैं और सेहतमंद भी होते हैं। हालांकि हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, इसलिए अपनी ज़रूरत और सेहत के हिसाब से ही कोई बदलाव करे। लेकिन कभी कभी फ्रूट डे रखना एक अच्छी आदत बन सकती है। तो आज सोचिए, आखिरी बार आपने कब सिर्फ फलों का आनंद लिया था? शायद अब वक्त है कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी से सेहत के थोड़ा समय चुरा के निकाले। इसे हेल्दी और पॉजिटिव सोच के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर। इन द शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी हमें अक्सर एक बात सिखाती है, सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम अपने दिल की बात कहने में देर कर देते हैं, किसी अपने को फोन करने में देर कर देते हैं या फिर किसी जरूरी फैसले को टालते रहते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि शायद हमें थोड़ा पहले कदम उठा लेना चाहिए था। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो बातें दिल में है उन्हें कह दीजिए। जिन लोगों की फिक्र करते हैं उन्हें अपनी अहमियत महसूस कराइए और जो सपने आपके दिल के करीब है उनकी तरफ आज एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। यही खूबसूरत एहसास हमें अगले गानों में भी सुनाई देता है। एक ऐसा गाना जो हमें याद दिलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रह जाए और वक्त निकल जाए। तो आइए इसी प्यारे से मैसेज के साथ सुनते हैं एक अगला गाना, जिस गाने का नाम है कहीं फिर देर ना हो जाए। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी मनीषा आपके साथ। शनिवार सिर्फ आराम करने का दिन नहीं है बल्कि खुद को बेहतर बनाने का भी एक मौका होता है। पूरे हफ्ते हम अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने बिजी रहते हैं कि अपनी स्किल्स पर ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन वीकेंड का थोड़ा सा समय अगर हम खुद को दे तो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। चाहे आपकी रुचि किसी नई भाषा में हो, कंप्यूटर स्किल्स में हो, पब्लिक स्पीकिंग में हो या फिर किसी क्रिएटिव काम में, शनिवार का दिन अपनी स्किल्स को ब्रशन अप करने के लिए बिल्कुल सही है। याद रखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना ही हमें आगे बढ़ाता है। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे कदम जरूर बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सीखिए या फिर अपनी पुरानी स्किल्स को और बेहतर बनाइए, क्योंकि खुद पर की गई मेहनत हमेशा सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। इसे पॉजिटिव सोच के साथ अब बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की तरफ। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट शो दिल से और एंजॉय कीजिए ओनली ऑन एमजी 90.8 FM साथ।

ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546। MGM University, Institute, छत्रपति संभाजीनगर।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शनिवार की रात आ गई है और पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद अब थोड़ा रिलैक्स करने का समय है। मैं तो सोच रही हूं कि आज रात एक अच्छी सी मूवी देखने का प्लान बनाया जाए। आखिर कभी कभी खुद को रिफ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। काम जिम्मेदारियां और रोज़ की व्यस्तता के बीच अगर हम अपने लिए थोड़ा समय निकाल लें तो मन भी खुश रहता है और एनर्जी भी मिलती है हमें। मूवी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें हंसाती है, कुछ नया सिखाती है और कई बार ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मौका भी देती है। चाहे आपको कॉमेडी पसंद हो, रोमांस पसंद हो, एक्शन या फिर कोई फैमिली फिल्म, शनिवार की रात इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी तक अगर आपका कोई प्लान नहीं बना है तो क्यों ना एक कप चाय या कॉफी के साथ अपनी पसंदीदा मूवी लगा दी जाए और इसे खूबसूरत शाम को थोड़ा और खास बनाया जाए। वीकेंड का असली मजा तभी है जब हम खुद को थोड़ा समय दें और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। इसी बात के साथ बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट शो दिल से और एंजॉय कीजिए शनिवार की शानदार रात। ओनली ऑन MGM 90.8 FM साथ है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। ये बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है कि आज के दौर में जहां हर दिन नए गाने रिलीज होते हैं, वही पुराने गाने भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर थोड़ा समय बिताते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कई पुराने गाने आजकल फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उन गानों पर रील्स बना रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं और नई पीढ़ी भी उन्हीं धुनों को फिर उतना ही पसंद कर रही है। शायद पुराने गानों की यही खासियत है, उनके बोल, उनकी सादगी, उनकी मधुर धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती। साल बदल जाते हैं लेकिन अच्छे संगीत का जादू हमेशा बरकरार रहता है। कई बार जब कोई पुराना गाना अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है तो वो हमें हमारी पुरानी यादों में भी ले जाता है और जो लोग पहली बार उसे सुनते हैं वो भी उसके दीवाने हो जाते हैं। तो सच में ये बहुत खूबसूरत बात है कि संगीत हर जनरेशन को जोड़ने का काम करता है। पुराने गाने आज भी उतने ही ताजगी भरे लगते हैं जितने अपने समय में लगते थे। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते ही देखते शनिवार की ये खूबसूरत शाम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपने थोड़ा आराम किया होगा, आपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया होगा और हमारे साथ अच्छे संगीत का भी आनंद लिया है। हर शनिवार अपने साथ कुछ खास पल लेकर आता है, कुछ नई यादें, कुछ मुस्कुराहटें और आने वाले हफ्ते के लिए नई पॉजिटिव एनर्जी। और अब जब ये शाम विदा लेने जा रही है तो अपने साथ ढेर सारी प्यारी यादें छोड़कर जा रही है। कहते हैं हर खूबसूरत पल को अलविदा कहना पड़ता है ताकि एक नई और बेहतर शुरुआत हो सके। तो चलिए शनिवार के इस प्यारे से शाम को मुस्कुराते हुए गुड बाय कहते हैं और आने वाले रविवार का स्वागत करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी के हर छोटे छोटे पलों का आनंद लीजिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ ये समय बिताकर बहुत ही अच्छा लगा। फिलहाल शनिवार की सुहानी शाम को गुड बाय कहते हैं और फिर मुलाकात होगी नई शाम, नई बातों और नए गानों के साथ। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: बोलते क्यों नहीं?
1: एक सवाल पूछूं, माँ बाप को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से कहने लगे? सवाल है ना बहुत बड़ा। हेलो आरजी अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और एक खबर आई थी अपने शहर की, एक घाटी अस्पताल में एक माँ एडमिट है और कहानी कुछ ऐसी है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो उनके अपने ही एक दूसरे के पास उन्हें भेजते रहे। पापा को मैंने संभाला था, माँ को तू संभाल, ऐसे दो बेटे कहने लगे। और सोचे यार, जिस माँ ने कभी ये नहीं सोचा कि आज सिर्फ बड़े बेटे को खिलाऊंगी छोटे को नहीं, उसी माँ के लिए आज हिसाब किताब हो रहा है। बचपन में ना तो हम गिरते थे, माँ बिना सोचे समझे दौड़कर आती थी और हमें उठाती थी, और आज वो खुद गिर जाए तो लोग सोचते हैं इस बार मेरी बारी नहीं है, दूसरा भाई उठाएगा। यू नो व्हाट, रिश्तों का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होता, बेपरवाही होता है। याद रखिए यार, पेरेंट्स आर नेवर बर्डन, दे आर द रीजन यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट टुडे। समझे, अगर आपके माँ बाप आज भी आपके साथ है तो उन्हें सिर्फ दवा नहीं, थोड़ा वक्त, थोड़ी इज्जत और बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा। सोचिए जरा, जिस माँ ने अपने बच्चों में फर्क नहीं किया आज उसके लिए हिसाब किताब हो रहा है। और दुख देने वाली बात ये थी कि जो माँ अभी घाटी अस्पताल में एडमिट है तो पिछले 2 साल से ओल्ड एज होम में रह रही थी, अपने बेटों का घर होने के बावजूद भी वो वहाँ पर रह रही थी और फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच में है। देखो यार, एक माँ ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजारी लेकिन आखिरी वक्त में उसको बच्चों का ही सहारा नहीं मिला। वैसे ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक सवाल है। अगर आप किसी दिन ओल्ड एज होम जाकर देखोगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारी कहानियां मिलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि यार, क्या माँ बाप सच में जिम्मेदारी होते हैं या फिर वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं हमारा फर्ज होते हैं? जवाब आपके पास है, वो जिम्मेदारी नहीं वो हमारा फर्ज है, हमें वो निभाना है क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया बचपन से लेकर आज तक। तो जब उन्हें हमारी जरूरत है उनका सहारा हमें बनना ही पड़ेगा। कभी कभी एक कप चाय और दो प्यार भरी बातें भी ना किसी दिन दवा से ज्यादा असर कर जाती है। तो वक्त मिले जैसे वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ बैठते रहिए, बातें कीजिए और याद रखिए आप वो बुजुर्ग हो रहे हैं, क्या पता कल हो ना हो। सो थोड़ा समझदार बनिए। अब ऐसे बच्चों को क्या ही कहे जो अपने माँ बाप को इस एज में ऐसा छोड़ देते हैं। खैर, ऊपर वाला इन्हें हिदायत दे। Stay tuned on MGM 90.8 FM.
2: ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट को छत्रपति संभाजी नगर।

भी सोचा है, हमारे छत्रपति संभाजीनगर को सिर्फ अजंता एलोरा ही नहीं बल्कि एक और रॉयल पहचान दुनिया भर में मिलती है। हेलो आरजी अदनान को आप सुन रहे हो इन द शो ऑल इज वेल। और वो पहचान क्या है जानते हो? हिमरू। जी हाँ, वही हिमरू जिसे कभी बादशाह और नवाबों की शान माना जाता था। और सबसे गर्व की बात यह है कि आज भी हमारे शहर की सिक्स जनरेशन इस विरासत को अपने हाथों से जिंदा रखती है। एक हिमरू शॉल मशीन से नहीं 12 दिन के मेहनत और हुनर से तैयार होती है। हर धागा सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता, 600 साल पुरानी कहानी बनाता है। आज इस हिमरू की डिमांड सिर्फ भारत में नहीं विदेश तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक शॉल नहीं है, ये छत्रपति संभाजीनगर की पहचान है। जब दुनिया फास्ट फैशन के पीछे भाग रही है तो हमारे शहर के कारीगर अपने हाथों से हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो अगली बार जब आप हिमरू देखें तो उसे सिर्फ एक फैब्रिक मत समझिए, उसमें छुपा है हमारे शहर का गौरव, हमारी संस्कृति और उन कारीगरों का पसीना जिन्होंने सदियों से इस विरासत को जिंदा रखा है। तो कभी आपने पहना है? कभी वो पहनने के बाद एक अलग प्राउड फील होता है, उसका कपड़ा भी बहुत ब्यूटी फुल होता है। तो कभी ट्राई कीजिएगा एंड प्राउड टू बी फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर, जहाँ हर धागा एक कहानी कहता है और हर हिमरू शॉल हमारे शहर की शान बढ़ाती है। तो ऐसे भी कुछ हटके अपने शहर की पहचान है, याद रखिएगा और बाकी सुनते रहिएगा।

टीम इंडिया श्रीलंका सीरीज के लिए तैयार हो रही थी और उसके दरमियान एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आरजी अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। तो बात कुछ ऐसी है कि टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी श्रीलंका सीरीज के लिए, तो प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल के दाएं हाथ के अंगूठे पर बॉल लगी और अच्छी खासी चोट आई है। जैसी इंजरी हुई तो मेडिकल टीम ने तुरंत ट्रीटमेंट दिया। अच्छी बात ये रही कि कुछ ही देर बाद गिल दोबारा लौट आए प्रैक्टिस के लिए, यानी फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं लग रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनकी कंडीशन पर नजर बनाई हुई है। अब सबकी दुआ यही होगी कि टीम इंडिया के कैप्टन पूरी तरह फिट होकर 15 अगस्त से शुरू होने वाली श्रीलंका टेस्ट सीरीज में मैदान पर उतरे और ये सीरीज अपने नाम कर दे। बाकी तो अभी टीम इंडिया एकदम जोर शोर से तैयारी कर रही है इस सीरीज के लिए और इसका शेड्यूल कुछ ऐसा है कि फर्स्ट टेस्ट मैच होगी 15 से 19 अगस्त 2026 के बीच में एंड सेकेंड टेस्ट है 30 से 27 अगस्त 2026 के बीच में, जो कि कोलंबो में होने वाली है। और ये दोनों मैचेस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 के दरमियान जो होती है तो उसका हिस्सा होने वाले है। तो गुड लक टीम इंडिया, सीरीज जीत कर ही आना एंड गेट वेल सून शुभमन गिल। और भी अपनी बहुत सारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University, NC3, छत्रपति संभाजीनगर.

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तू भी सुनो पापे.

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017808546. MGM University, NC3, छत्रपति संभाजी नगर.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।